0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौ। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: अनुरोध राख्दै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु गौतम दत्त चन्द्रौटा कपिलवस्तु।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्सगेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: ए रजनी ऊ वही लम्बा डंडा है जल्दी लेके आओ तो
2: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप काहे डंडा खोजा जाता
4: है एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे ओका डंडा से डरवाई के भगावे के पड़ा जल्दी लाओ ना
2: अरे सांप का नहीं चला चाहिए ना नहीं तो हमरे इनका डस सका था रह दिया जाए बल्कि घर भीतर आए तो भगाओ खोई
4: रजनी फार्म में हल्के मुर्गी मार दे और खाई ले यही नाते भगावे के चाहत रहे
2: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कह के तार दारी लगाए हन सांप मुर्गी के नुकसान नहीं करी बल्कि आप खाना डस्टी ले दूर रह जाए
4: ए सही कहे का करें सांप देख के बाद डर लग जाते है अरे सांप तो लौट के बेरवा की ओर चले गए
2: हमरे घर नाई सपन से डेरावा जाता है उन्हरियो हमरे से डेरा था यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या आपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है
5: सांप से दूर रहा जाए सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए सांप आदमी से डेरात है न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी लेकिन उस सब खाना के खोजी में बहरे निकरा समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है ऐसन करत के सांप डस लेत है
6: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
8: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना
9: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाड जोड्ने नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ
8: ब्लड प्रेसर सुगर थाइराइड मुटु रोग छाती रोग ग्यास्ट्रिक अल्सर निमोनिया चक्कर लाग्ने लुतो दाज पुतले दुबे चाया डन्डीफोर पुरानो घाउ खटिरा यौन दुर्बलता सेतो पानी बग्ने यौनाङ्गका घाउ खटिरा कपालको रौँ झरिरहने हाड जोर्नीका समस्याहरू प्यारालाइसिस जोर्नीहरू दुख्ने नचल्ने नसा च्यापिएको ढाड कम्मर दुख्ने मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या लिगामेन्ट च्यापिएको भाँचिएको हाड
9: विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ
8: ब्लड प्रेसर सुगर थाइराइड मुटु रोग छाती रोग ग्यास्ट्रिक अल्सर निमोनिया चक्कर लाग्ने लुतो दाज पुतले दुबे चाया डन्डीफोर पुरानो घाउ खटिरा यौन